अमृत नाम शीतल मन गहै, अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊने सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया, खिन मैं नथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा, हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरव महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कहो प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन उसदा निहाल, सर्व गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम। जा कहो भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना, कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ता की रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवा, चितवत पाप ना आल के आवै, बेसवा भजत किशने शरमावै, सारो दिन समझूरी करै, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै। माया लग पुलो संसार, वा पुलाया पुलावन हारै, राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ। पेखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करै कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवै, करने हारना जी मैं आवै। करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत ना कार्ज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना। जिसके राखे होए हरे आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया। पैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साज शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे। राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई, तार लय सागर संसार रहाओ। जिन कौ लिखिया हर एहो निदान, सहजंतर गै पावै मान, सुख सहजानंद गुण गाओ, अगै मिलै निथावे थाओ। जुगै जुगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागै, जन्म जन्म का सोया जागै, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप। जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभ सदी साथ। पैरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतरजामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रव्या हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान। नाम रतन मेरे भंडार, अगम्या मोला।

नाम हमारा भोजन भाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ, नाम ना विसरै संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभु कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बनियाई, धनवंते सही प्रधान, नानक जा कै नाम निधान, पैरव महला पंजवा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात, रहाओ हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तव प्रसाद रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल बिगास, हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक ने तेरे, पैरो महला पंजवा। सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार, ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए, रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग, दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जा का हुक्म ना मेटै कोए, सिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना में आधार, रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारे है फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्त जे पावे कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानके आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जो नी भवना, संत की निंदा रोगी करना। संत की निंदा दुख सहाम, डान दैत निंद कौ जाम। संत संग करे जो बाद, तिन निंदे नाही के साध, रहाओ।

नरस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, सा संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ। चरण कमल स्यो लागो हेत, खिर मैं बिन स्यो महाप्रेत, आठ पहरो हर हर जप जाप, रखनहार गोविंद गुरे आप। अपने सेवक कौसदा प्रतपार है, पगजना के सास निहार है, मानस की कहो केतक बात, जमते राखे देकर हाथ। निर्मल शोभा निर्मल रीत, पार ब्रह्म आया मन चीत, कर कृपा गुरदीनो दान, नानक पाया नाम निदान। पहरो महला पंजवा, करण कारण समर्थ गुर मेरा, जी प्राण सुखदाता नेरा। पह पंजन अबनासी राय, दर्शन देखे सब दुख जाए। जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ। पूर्ण काम मिले गुरदेव, सफल दाता निर्मल सेव, कर गह लीने अपने दास, राम नाम रिद्धियो निवास। सदा आनंद नाही के सोग, दुख दर्द न व्यापै रोग, सब किश तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म गुर अगम अपार। निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी, जल थल महियल रविया सोए, नानक सब किश प्रभ ते होए। पहरो महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरने, सर्ब मनोरथ पूर्ण करने। आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत, सोवट भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरह संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जिस वरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पिछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिद माहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना। आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने। पैरो महला पंजवा, नाम लै तो किश बिघ ना लागे, नाम सुन तो जम दूरों भागे। नाम लै तो सब दुख है नास, नाम जप तो हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमर तो किस चाख ना जो है, हर सिमर तो दैत देव ना पुहै। हर सिमर तो मोह मान ना बदै, हर सिमर तो गर्भ जोन ना रुदै। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया केला। जात अजात जपै जन कोए, जो जपै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभ कृपा तार, सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवा, आपे सास्ते आपे भेद, आपे कटकट जाने भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ, दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ। आपे वन त्रिण त्रि पवन सार, जाकै सूत परोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्बाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावै नानक साध संग। मुकत

नाव मेरे बंधप नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सहिस्माना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मर्म कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप वा पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, पजले रेह मन सारंग पानी। आब ना पजस पजस का उपाई, आवै अंत ना पजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताव ना पाव पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पद ऊपर

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदवो लंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सागत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पता

ते डकाई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जिस उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु का सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राये जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै कामता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावै मंजर सदूर महल को पावै रहाओ ते तीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा पिखारी दियो जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पिस्त नजीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमा वासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एकै चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहे समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जमे जोत करे प्रगास बिजली चमके होया आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दल अभय अंतरमंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंस सो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुन यार पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइय गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मै रहो समाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आप होए। जोत मंत्र माने असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थरे। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर परे पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस नाम हरी। प्रणवै नाम दे हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ता कह निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम दे नाकै बिना, ना सोहै बत्ती सलखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो न कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूंपे आर ना पावै। पंत नाम दे एक नाम निस्तार है, जे गुरमिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत ते

अंतर्यामी प्रब दयाल अपने दास को नजर निहाल कर कृपा मोह देहो दान जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां राम रंग सब गए पाप राम जप तो कछ नहीं संताप। गोविंद जप तो सब मिटे अंधेर हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग संत जना स्यों सदा संग रहाओ। संत जनी किया उपदेश जह गोविंद भगत सो धन देस। हर भगतहीन उदयान थान गुर प्रसाद घट घट पछान। हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू सदा संग। निगट पेख प्रभ करण हार ई तूत प्रभ कार जसार। चरण कमल सों लगो ध्यान कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए गुरपुरे की सदा सरनाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब भ्रम थके। बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देस दसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे ओ अपना बीजा आप खाहे। जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप अखंड पूर्ण जाको प्रताप। गुण गोबिंद नित रसन गाए नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवे नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै फिर सतगुर दी सह बिललांती सागत फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास। पह बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस। जल थल महियल रव रहया गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिद एह कर्म प्राप्त जिस नाम देह। प्रभ जप जप जीवै तेरे दास गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगल इच्छा जपनिया प्रभ मिले चिरी विछुनिया। तुम रवो गोबिंद रमन योग जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया अपना दास आप संभालिया। से सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां किल बिख बिनसे गाए गुना आन दिन उपजी सहित तुना। मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे। नित रातो हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल। एहो मन होवा साध तूर नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाम
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

जोगी जंगम अरसन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पवसागर उतरे पार। जन नानक हर की सरनाए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल बिनासी मन ते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन दारा संपत ग्रेह क संग न चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीत अनीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कर बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किश कीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर सबदी बिखत्यास निवास। गुर सबदी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिखुमाए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यो फासस काम हार कड़बंधन बांध्यो शीस मार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। तां कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले न जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ।

सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परम हीर। तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग। नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हिंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली। चारे दीवे चौ हथ दिए, एका एका वारी। मेहरवान मधुसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ। कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी। धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी। नासा बूर होवै फिर मंगै, नारद करे खुआरी। लाभा देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी। पूंजी मार पवै नित मुदगर, पाव करे कोटवारी। पावै चंगा पावै मंदा, जैसी नजर तुम्हारी। आद पुरख को अल्लो कही है, सेखा आई वारी। देवल देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली। कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी। घर घर मियां सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी। चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिफत तुम्हारी। तीर्थ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिलै दिहाड़ी। नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली। बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई। अन क्यों पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई। मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाई है। भज राम नाम निशान रहाओ। एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया। राम नाम गुर उदग चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया। बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमति कर पाया। दीना दीन दयाल पय है, ज्यो कृष्ण बिदर कर आया। मिल्यो सुदामा भावनी तार, सब किश आगे दालद पंज समाया। राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आप रखाई। जे सब सागत करे बखिली, एक रत्ती तिल ना कटाई। जन की उसत है राम नामा, दे दे शोभा पाई। निंदक साकत खब ना सकै, तिलो अपने कर लू की लाई। जन को जन मेर शोभा पावै, गुण में गुण परगासा। मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवै दासन दासा। आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावै। नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावै। बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुकिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद। सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार। बाल्मीकै होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग। तेरिया संतां जाचौ चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख। बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद। बदक उदारो खम परहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट तार। पिदर उदारो

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करण हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कह न त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्यो योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुली।

मरहया पहगे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अगन के लूठे। अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दिनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना

जाओ। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मुसबिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिलो, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्पयो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई, मन का मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ। आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ। तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे लेवे रह नहीं, तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्याव से मृत पाव, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वरे आण मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी हियर, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया, मन भावे शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुर तो रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहा तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

त्रै गुण सब बात आत है, ना हर भगत ना पाए, गत मुक्त कदे ना हो वई, हम मैं कर्म कमाए, साहिब भावै सो थीऐ, पै किरत फिराए, सतगुर भेटिऐ मन मर रहै, हर नाम वसै मन आए, तिसकी कीमत ना पवै, कहना किछु ना जाए, चौथे पदवासा होया, सच्चे रहै समाए, मेरा हर प्रभ अगमै अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुर प्रसादी बुझी है, सब दे कार कमाए, नानक नाम सलाहे तू, हर हर दर सोभा पाए, मलार महला तीजा, गुरमुख कोई विरला बूझे, जिसनों नजर करे, गुरबिन दाता कोई नाही, बक्से नजर करे, गुर मिलिया सांत उपजै, अंदर नाम लय, मेरे मन हर अमृत नाम ते आए, सतगुर पुरख मिलै नाव पाईए, हर नामे सदा समाए, रहाओ मनमुख सदा विछड़े फिर है, कोई ना किसी नाल, हमें वड्डा रोग है, सिर मारे जमकाल, गुरमत सत संगत ना विछड़े, अंधे नाम संभाल, सबना करता एक तू, नित कर देखे विचार, एक गुरमुख आप मिलाया, बक्से भगत भंडार, तू आपे सब कुछ जानदा, किसे आगे करी पुकार, हर हर नाम

ਇਹੋ ਮਨ ਖੇਲੈ ਹੁਕਮ ਕਾ ਬਾਂਦਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮੈਂ ਦਹਿ ਦਿਸ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤਤਕਾਲ ਵਸ ਆਵੈ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਵਿਦਮਨ ਹੂੰ ਜਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ ਪਵ ਸਾਗਰ ਜਿਤ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਘੜ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਦਿ ਬੁਝਾਈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਈ ਅਧਿਸ਼ਟਾ ਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਧਿਆਈ ਰਹਾਓ ਮਨ ਤਨ ਪੀਜੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਰੰਪੋ ਭਾਗੈ ਏਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਗਤ ਮਤ ਤਬ ਹੀ ਪਾਈ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਕੋ ਸੁਆਈ ਜਹ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਕੋ ਸੋਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਭ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਤ ਬੈਰਾਗੀ ਦਰਸਾ ਚੈ ਪਤ ਪਾਈ ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਸਿਉ ਰਹੋ ਸਮਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾ ਮਨ ਪੀਜੈ ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਓ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਸਾਖੀ ਆਪੇ ਜਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਪੌਣ ਵਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸਭ ਘਰ ਲਾਏ ਸੋ ਸਚ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਡਾਈ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਲੱਦਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖਰ ਮਾਰੀ ਮਨ ਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ਇਹੋ ਪਵਜਰ ਜਗਤ ਨਾ ਜਾਈ ਤਰਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਹਰ ਤਾਰੀ ਰਹਾਓ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਬਹਿਕਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕਰਨੀ ਉਤਮ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਜਗ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰਿ ਵਰ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹੋ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਕਿਹੋ ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਕਿਹੋ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ ਕੇ ਇਹੋ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕੇ ਇਹੋ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਮਤਾ ਕਿਥੋਂ ਲਾਗੀ ਪੰਡਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਅਵਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜੈ ਉਠਾਵੈ ਭਾਰ ਰਹਾਓ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤਾ ਲਾਈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਿਰਿਸ਼ਟਿਓ ਪਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੋ ਭਾਈ ਸਦਾਰੋ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਤਿਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ ਅੰਦਨੇ ਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਦੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸੀਸ ਤਰੇ ਸਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਨਿਰਵਾਣ ਸੋ ਪੰਡਤ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਣ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਏਕੋ ਏਕ ਵਖਾਣੈ ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲੇ ਸੋਏ ਐਥੈ ਉਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਏ ਸੋਈ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਅੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਫਿਰ ਕੂਕ ਨਾ ਹੋਏ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਜੋਨ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਈ ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰੇ ਨਿਤ ਪਤ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਇਆ ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਅੰਤਰ ਭਗਤ ਹਰ ਹਰ ਉਰਤਾਰ ਭਵ ਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ ਦਰ ਸਾਚੈ ਦਿਸੈ ਸਚਿਆਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
बिन गुर भरम भूले बहु माया, हम मैं ममता बहु मोह वधाया, दूजे पाए मनमुख दुख पाया, आपे करता अगम्या था, गुर शब्दी जपिया सच लाहा, हाजर हजूर हर वे प्रवाह, नानक गुरमुख नाम समाहा। मलार महला तीजा, जीवत मुक्त गुरमति लागे, हर की भगत अंदन सज जागे, सतगुर सेवै आप गवाए, हौं तिन जन कै सद लागो पाए, हौं जीवां सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारस मीठा, हर कै नाम मुक्तगत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान गुबार, मनमुख मोहे मुग्ध गवार, आंदन धंधा करत विहाए, मर मर जमै मिलै सजाए, गुरमुख राम नाम लिवलाई, कूड़ै लालच ना लपटाई, जो किश होवै सह सुभाए, हर रस पीवै रसन रसाए, कोट मदे किसै बुझाई, आपे बगसे दे वडियाई, जो तुर मिलिया सो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई। मलार महला तीजा, रसना नाम सब कोई कहै, सतगुर सेवेता नाम लहै, बंधन तोड़े मुक्त कर रहे, गुर शब्दी अस्थर कर बह, मेरे मन काहे रोस करी जै, लाहा कलज गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जय रहाओ। बाबीहा खिन खिन बिल लाए, बिन पर देखे नींद ना पाए, एहो विछोड़ा सया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुभाए, नामहीन बिनसै दुख पाए, तृष्णा जलिया भुख ना जाए, गिण भागा नाम ना पाया जाए, बहुबे थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी बेद विचार, बिख्या मैल बिख्या व्यापार, मर जन्मै फिर होहे खुवार, गुरमुख तुरिया गुण और तार, गुर मानै मानै सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए, चहो जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए। राग मलार महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आन दिन हर हर नाम ते आयो, हृदय मत गुरमत दुख विसारी, सब आसा मनसा बंधन टूटै, हर हर प्रभ कृपा तारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुर देख मेरा मन बिकसियो, जन हर भेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसकै कुल लागी गारी, हर तिसकै कुल परसूत ना करियो, तिस विधवा कर महतारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस अहनस हर उरतारी, गुर डीठै गुर का सिख बिकसै, ज्यो बारक देख महतारी, तन पिर का इक ही संग वासा, विच हो मैं पीत करारी, गुरपूरै हो मैं पीत तेरी, जन नानक मिले बनवारी। मलार महला चौथा, गंगा जमना गोदावरी, सरस्वती ते करह उद्दम तूर साधु की ताई, केलवख मैल परे परे हमरै विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई, तीर्थ अड़सठ मजन नाई, सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै पागीर्थ आनी, जाहर नवी तपै पागीर्थ आनी, केदार था प्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हरजन शोभा पाई, जितने तीर्थ देवी थापे, सब तितने लोचै तूर साधु की ताई, हर का संत मिलै गुर साधु, लै तिसकी तूर मुख लाई, जितनी श्रेष्ठ तुमरी मेरे स्वामी, सब तितनी लोचै तूर साधु की ताई, नानक ललाट होवै जिस लिखिया, तिस साधु तूर दे हर पार लंघाई। मलार महला चौथा, तिस जन कौ हर मीठ लगाना,
जिस हर हर कृपा कर तिसकी भूख दुख सब उतरै, जो हर गुण हर उचरै, जप मन हर हर हर निस्तरै, गुर के बचन कर न सुन त्यावै, पव सागर पार परै रहाओ। तिस जन के हम हाट विहाजे, जिस हर हर कृपा करै, हर जन को मिलिया सुख पाईऐ, सब दुर्मत मैल हरै, हर जन को हर भूख लगानी, जन तृप्तै जा हर गुण बिचरै, हर का जन हर जल का मीना, हर बिसरत फूट मरै, जिन एह प्रीत लाई सो जानै, कह जानै जिस मन तरै, जन नानक हर देख सुख पावै, सब तन की भूख टरै, मलार महला चौथा, जितने जी जंत प्रभ कीने, ततने सरकार लिखावै, हर जन को हर दीन वडाई, हर जन हर कार लावै, सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौजल जगत तरावै रहाओ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावै, हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप तरावै, भरम भूले अज्ञानी अंधले, भ्रम भ्रम फूल तोरावै, निर्जियो पूजै मड़ा सिरेवै, सबरथी काल गवावै, ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहियै, हर हर कथा सुनावै, तिस गुर कहो शादन भोजन, पाठ पटंबर बहु बिद, सत कर मुख संचो, तिस पुन की फिर तोट ना आवै, सतगुर देओ परतख हर मूर्त, जो अमृत बचन सुनावै, नानक भाग भले तिस जन के, जो हर चरणी चितलावै, मलार महला चौथा, जिनकै हियर बसियो मेरा सतगुर, ते संत भले पल भांत, तिन देखे मेरा मन बिकसै, हौं तिनकै सदबल जात, ज्ञानी हर बोलो दिन रात, तिन की तृष्णा भूख सब उतरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाओ, हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाय प्रांत, ज्यों जल दुध भिन्न भिन्न काढ़ै, चुण हंसला त्यों देही ते चुण काढ़ै, साधु हौं मैं तात, जिन कै प्रीत नाहीं हर हिरदै, ते कपटी नर नित कपट कमात, तिन को क्या कोई देख वालै, ओए आप बीज आपे ही खांत, हर का चिहन सोई हर जन का, हरे आपे जन्म आप रखांत, तन तन गुरु नानक समदर्शी, जिन निंदा उस्तत तरी तरांत, मलार महला चौथा, आगमा गोचर नाम हरि उत्तम, हर कृपा तेज पलया, सत संगत साध पाई वडभागी, संग साधु पार पया, मेरा मन अन दिन आनंद भया, गुर प्रसाद नाम हर जपया, मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाओ, जिन हर गाया जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुख हौ मैं रोग गया, जो वंदन हृदय नाम त्यावै, सब जन्म तिन्ना का सफल भया, ओए आप तरे सिरहिट सब तारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप पाया सब जग, तुद आपे वस कर लया, जन नानक कहो प्रभ कृपा तारी, बिख डुबदा काढ़ लया, मलार महला चौथा, गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाई, मनमुख मूड जलत हंकारी, हौ मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिस ते उपजे तिसै ना चेतै, त्रिग जीवन त्रेखाई, प्राणी गुरमुख नाम ते आई, हर हर कृपा करे गुरमेले, हर हर नाम समाई रहाओ, मनमुख जन्म पया है बिरथा, आवत जात ले जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हौ मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध ना बुद्ध पई मत मध्यम, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम पकरे बिल लाई, हर का नामा गोचर पाया,
गुरमुख सह सुभाई नाम निधान वसिया घट अंतर रसना हर गुण गाई सदा आनंद रह दिन राती एक शब्द लिवलाई नाम पदार्थ सहजे पाया ए सतगुर की वडियाई सतगुर ते हर हर मन वसिया सतगुर कहो सतबल जाई मन तन अर्प रखो सब आगै गुरचरणी चितलाई अपनी कृपा करो गुर पूरे आपे लहो मिलाई हम लोहो गुर नाम बोहे था नानक पार लंघाई मलार महला चौथा पड़ताल करती जाए को अंकार सतगुर प्रसाद हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर तोर रहाओ हर तन बन जाओ हर तन संचो जिस लागत है नहीं चोर चात्रक मोर बोलत दिन राती सुन कन हर की कोर जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर नानक जन हर कीर्त गाई छूट गयो जमका सब सोर मलार महला चौथा राम राम बोल बोल खोज देवट भागी हर का पंथ को बतावै हौता कह पाए लागी रहाओ हर हमारो मीत सिखाई हम हर स्यों प्रीत लागी हर हम गावे हर हम बोले और द्वितीया प्रीत हम त्यागी मन मोहन मोरो प्रीतम राम हर परमानंद बैरागी हर देखे जीवत है नानक एक निमुख पलो मुख लागी राग मलार महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद क्या

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाय ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जै जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सोलैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बोजोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कत सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चर...

ज्यों जल में कमल अलिप्त है ऐसी बणत बनाए से सुखी है सदा सोहणे जिन विचों आप गवाए तिन सोग विजो कदे नहीं जो हर कै अंक समाए सलोक महला तीजा नानक सो साला ही है जिस विच सब किश होए तिस सरे वो प्राणी हो तिस बने वरना कोए गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए सहसा मूल न होवई सब चिंता विचों जाए जो किश होए सो सहजे होए कहना किशु ना जाए सच्चा सह मन वसै ता मन चिंदिया फल पाए नानक तिनकाया ख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिनी बुझिया हर अमृत रखिया उरतार हर अमृत पीवै सदा रंग राते हम मैं तृष्णा मार अमृत हर का नाम है वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मुरार पौड़ी अतुल क्यों तोली है मन तोले पाया ना जाए गुर कै शब्द विचारी है गुण में रह समाए अपना आप तोलसी आपे मिले मिलाए जिसकी कीमत ना पवै कहना छू ना जाए हम बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझती बोझाए जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ ना पाए विण नावै नाल ना चलसी जासी जन्म गवाए गुरमती जागे तिनी कर रखिया दूता का किश नाम वसाए सलोक महला तीजा बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुकुम मन नानक हुकम मन्या ते खुतरै चढ़ै चवगण वन महला तीजा बाबीहा जल मैं तेरा वास है जल ही माए फिराहे जल की सार न जानई ता तू कुकण पाए जल थल चहु दिस वरसदा खाली को थाओ नाहे एतै जल वरसदै तिख मरै भगत न के नाहे नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वसिया मन माहे पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर कने अंत ना पाया गुरमुख नाम ते आए तुझै समाया जोग शक्ति गुबार तिसी पाया जला बिंब असराल तिने वरताया नील अनिल अगम सुरजीत सबाया अग्नि उपाई वाद पुख तिहाया दुनिया कै सरकार दूजा पाया रखे रखण हार जिन शब्द बुझाया सलोक महला तीजा एहो जल सब तै वरसदा वरसै पाए सुभाए से बिरखा हरियावले जो गुरमुख रहे समाए नानक नदरी सुख होए इना जनता का दुख जाए महला तीजा पिनी रैन चमकिया उठा शबर लाए जित उठा अंतर बहुत उपजै जा सहो करे रजाए जित खादे मन तृप्ति है जिया जुगत समाए एहो तन करते का खेल है कदे आवे कदे जाए ज्ञानिया का तन नाम है सद ही रह समाए नानक जिन को नजर करे ता एहो तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसे करी पुकार आपे लेखा मंगसी आप कराए कार जो तिस पावै सोथी है हुक्म करेगा वार आप छड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार आपे वेखै सुने आप सब सहदे आधार सब मैं एक वर्तदा सिर सिर करे विचार गुरमुखिया विचारी है लगे सच प्यार नानक किसनो आखी है आपे देवनहार सलोक महला तीजा बाबीहा एहो जगत है मत को परम पुलाए एहो बाबीहा पशु है इसनो बुझण नाहे अमृत हर का नाम है जित पीतै तिख जाए नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुण न लागी आए महला तीजा मलार शीतल राग है हर त्याया सांत होए हर जीव अपनी कृपा करे तां तै सब लोए
ਵੁੱਠੇ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਹੋਏ, ਧਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਗਤ ਸਭ ਜਲ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ

अमृत पी जई, हर भक्ति असनेहे गुरमुख की जई। सलोक महला तीजा, गुरमुख मलार राग जो करै, तिन मन तन शीतल होए, गुरसबदी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मन तन सच्चा सच मानो, सच्चे सच्ची सोए, अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कल युग में कोर अंधार है, मन मुख राहो ना कोए, सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा, इंद वरसै कर दया, लोका मन उपजै चाओ, जिसकै हुक्म इंद वरसदा, तिसकै सद बलिहार जाओ। गुरमुख शब्द संभालिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते से जन निर्मले, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर से पूरा पाया, पूरा कर्म ते आए, पूरा शब्द मन वसाया, पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया। शब्द मरे मन मार, तन जने दी माया, दर सच्चे सच्चियार सच्चा आया, पुछ न सके कोए जा खसमै पाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया। श्लोक महला पहला, कुल्हा देंदे बावले, लेंदे वड्डे नलज, चूहा खड न मावई तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाहे। फसल अहाड़ी एक नाम, सामनी सच नाओ, मैं महदूद लिखाया, खसमै के दर जाए, दुनिया के दर केतड़े केते आवे जाए, केते मंगे मंगते केते मंग मंग जाहे। महला पहला, सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पांच सह दाना खाए, डके फूके केहे उड़ावै, साहे गए पछताए। अंधी फूक मुई देवानी, खस मिट्टी फिर पानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल्लाए, खस में पावै ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सकता सी हो मारे सह मेरे आ, सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरे न मावै, साहे गए पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावै, खसमै मूल न पावै, अक्स्यो प्रीत करे अक तिड्डा, अक डाली बै खाए। खसमै पावै ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए, नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीते दुख होई।

तिन पौ सागर तरना पौड़ी अगमा गोचर तू धनी सच्चा लख्या पार तू दाता संमंग ते को देवन हार जिनी सेव्या तिनी सुख पाया गुरमति विचार इकना नो तुद एवै भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द पसलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत न हो वई विण सतगुर न लगै प्यार तू प्रभ सब तुद सेवंदे इक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राती काल कटै दिन काल छिजै काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुल्या चुक गया तबताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रोवै लियावै फेर बिन बूझे के सूझै नाही मोया रोहे रोंदे मर जाही नान खसमै वै भावै सही मुए जिन चित ना आवै महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैरवादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रली कितों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्लां गोईया कीता चौरली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुखदाता अंते हुए सखाई बाजगुरु जगत बौराना नामै सार ना पाई सतगुर सेवै से प्रवान जिन ज्योति ज्योत मिलाई सो साहेब सो सेवक तेहा जिस भाणा मन वसाई आपणे भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजै नाही मूर्ख भुख न जाई दूजै सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनों किरपा करे रजाई श्लोक महला पहला सर्व धर्म दोय नानका जे तन पल्लै पाए सो तन मित्र ना कांडियै जित सिर चोटां खाए जिनकै पल्लै धन वसै तिनका नौ फकीर जिनकै हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगै दुख नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लथी भुख रूपी भुख ना उतरै जा देखा ता भुख जे तेरा शरीर के तेते लगै दुख महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंध तन अंध चिकड़ लाया क्या थी है जा टुटै पत्थर बंद बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ नानक सच्चे नामिण केते डुबे साथ महला पहला लख मन सोयना लख मन रूपा लख साहा सिर शाहो लख लश्कर लख वाजे नेजे लखी कोड़ी पातशाहो जिथे सायर लंघना अगन पानी असगा हो कंधी दिस न आवई ताही पवै कहा नानक उथे जानिए साह के पातशाह पौड़ी एक ना गली जंजीर बंदर बाणी है बदे छुट्टे सच सच पछाणी है लिखिया पल्लै पाए सो सच जानिए हुक्मी होए नबेड़ गया जानिए पाओ जल तारनहार शब्द पछाणिए चोर जार चुवार पीड़े कहानिए निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए गुरमुख सच समाए सो दरगह जानिए श्लोक महला दूजा नाओ फकीरै पातशाह हो मूर्ख पंडित नाओ अंधे का नाओ पारखू एवै करै गुआओ इलत का नाओ चौधरी कूड़ी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कलका एहो न्याओ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाओ फांदी लगी जात फहाए न अगे नाही थाओ सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाणा नाओ पहलों दे जड़े अंदर जमै ता उपर होवै इशाओ और आज ऐसी ही मुकदम कुत्ते जाए जगाए न बैठे सुते चाकर नह दा पाए न काओ रात पेत कुत्ते हो चट जाओ
ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ, ਨੱਕੀ ਵੱਡੀ ਲਾਏ ਤਬਾਰ, ਪੌੜੀ ਆਪ ਪਾਏ ਮੇਗਰੀ, ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਪੈ ਬਿਨ ਪਰਮ ਨਾ ਕੱਟੀਐ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਉ ਉਪਜੈ, ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਪੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ, ਪੈ ਤੇ ਪੈ ਜਲ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਜਿਸਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਪੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਤੇ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈਂ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਉਰ ਧਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੁੱਖੈ ਸਾਧੈ ਗੰਢ, ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਕੁਲ ਮਿਚਲ, ਲੱਭੈ ਮਾਲੈ ਕੁਲ ਮਿਲ ਮਿਚਲ, ਉਂਘੈ ਸੌੜ ਪਲੰਘ, ਪੌਕੈ ਕੋਪ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਫੱਕੜ ਪਿੱਟੇ ਅੰਧ, ਚੁੱਪੈ ਚੰਗੈ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਮੋਹੇ ਗੰਧ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਜਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ, ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਣ ਠੱਗ ਸੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਹੋਰ

मास्यो पन्ना तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिभवन गन्ना। तोवा आखे हाँ गोबिंद हच्छा तो वह बहुत बेकारा एते रस छोड़ होवे सन्यासी नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा कि नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया। एक भगवा वेसकर परम देवन सतगुर करे ना पाया दे दसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है कर चानने आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया। एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया। काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जर वाणा कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी। फाथा चुगै चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कून निखुटसी। सलोक महला पहला घर मैं घर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजै शब्द निशान। दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान तार कोर बाजंतर तह साज तख्त सुल्तान। सुख मन कै कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए। उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो ना जाए अजप्पा जापना विसरै आज जुगा समाए। सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोजे हो कर लहै नानक ताका दास। महला पहला चिल मिल बिसियार दुनिया फानी कालूब अकल मन गोर ना मानी। मन कमीन कम तरीन तूंदरिया खुदाया एक चीज मुझे देह अवर जहर चीज ना पाया। पुराब खाम कूजै हिकमत खुदाया मन तो आना तू कुदरती आया। सग नानक दीवान मस्ताना नित चढ़े सवाया आतस दुनिया खुनक नाम खुदाया। पौड़ी नवी महला पंजवा सबो वरत चलत चलत वखाणिया पार ब्रह्म परमेसर गुरमुख जाणिया। लथे सब विकार शब्द नी साणिया साधु संग उदार पहे निकाणिया। सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट पया संसार मेहर शावाणिया। आपे बख्स मिलाए सद कुरबाणिया नानक लय मिलाए खसमै पाणिया। सलोक महला पहला तन सो कागद कलम तन तन पांडा तन मस तन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। महला पहला आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू एको कहिए नानका दूजा काहे कू। पौड़ी तू आपे आप वरदा आप बणत बनाई तुझ बिन दूजा को नहीं तू रह समाई। तेरी गत में तू है जानदा तुद कीमत पाई तू अलाखा गोचर अगम है गुरमुख दिखाई। अंतरा ज्ञान दुख परम है गुर ज्ञान गवाई जिस कृपा करत समेल लै सो नाम ते आई। तू करता पुरख्या गम है रविया सब ठाई जित तू लाए सच्चा तित को लगै नानक गुण गाई। सुध राग मलार बाणी भगत नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवी ले गोपाल राया कुल निरंजन भगत दान दीजै जाचै संत जन रहाओ। जाचै घर दिग दिसै सराय चा बैकुंठ पवन चित्रसाला सबत लोग समान पूरी अले। जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी। सो ऐसा राजा श्री नरहरी
जांचै कर कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावड़ा जिन विश्व संसार रचीले जांचै कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुन जांचै डांगिया द्वारै चित्रगुप्त लेखिया धर्म राय परली प्रतहार सो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचै कर गण गंधर्व रिखी बपड़े ढाडिया गवंत आचै सर्वशास्त्र बहु रूपिया अन गरुआ आखाड़ा मंडलीक बोल बोले काछे चौर ढूल जांचै है पवन चेरी सकत जीतले पवन अंड टूक जांकै पसमती सो ऐसा राजा त्रिपवनपति जांचै कर कुरमा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालिनी छिनवै करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख प्रसेव जांचै सुरसरी सप्त समुंद जांकै कड़थली एते जी जांचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी जांचै कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जांचै है करी सर्व व्यापक अंतर हरी प्रणवै नाम देव तांची आन सगल भगत जाचै निशान मलार मोको तू ना बिसारे रमैया रहाओ आलावंती हो प्रम जो है मुझ ऊपर सब कोपला सूद सूद कर मारो उठायो कहां करो बाप बीठला मुए हुए जो मुक्त दे होंगे मुक्त ना जाने कोयला ए पंडिया मोको ढेड़ कह तो तेरी पैज पछौंडी होएला तू जो दयाल कृपाल कहियत है अद पुज पयो अपारला फेर दिया देहरा नामे कहो पंडियान कहो पिछवारला मलार बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखिया चमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग रहाओ सुरसरी सलल कृत बार नीरे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तार तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत बिचारंग भगत पागौत लिखिए तेहि उपरे पूजिए कर नमस्कारंग मेरी जात कुट बांडला ढोर टोवंता नितै बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान ते कर डंडौत तेरे नाम शरण आए रविदास दासा मलार हार जपत तेऊ जना पद्म कवलास पात ता सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्थरयो आन रे आन पर पुरुषो रहाओ जां कै भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जाता शोभ शिपा ब्यास मैं लेखी है सनक मैं पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जां कै ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिए सेख शहीद पीरा जां कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जा के कुटुंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत फिरै अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करहत डंडौत तिन तनै रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत साल संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लो धोवो आवैगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनज उठ ही गई हटियो कहो रविदास।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट। कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रवला दो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यो पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमती सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यो पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे कुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ। तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्तत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर

गाइए गुण गोपाल कृपा निध दुख बिदारन सुखदा ते सतगुर जा को पेड़त होए सगल सिद्ध रहाओ। सिमरत नाम मनै साधार कोट परादी खिन मैं तार जा को चीत आवै गुरे अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना। जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर की नी माया हलत पलत मुख उजल पया। कानड़ा महला पंजवां आराधो तुझे स्वामी अपने ऊठत बैठत सोबत जागत सास सास सास हर जपने रहाओ। ता कै हिरदै बस्यो नाम जाको स्वामी कीनो दान ता कै हिरदै आई सांत ठाकर पेटे गुर पचनात। सर्व कला सोई परवीन नाम मंत्र जाको गुरदीन कहो नानक ता कै बल जाओ कल युग मैं पाया जन नाओ। कानड़ा महला पंजवां कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोबिंद जी के बसना रहाओ। अनक पांत कर द्वार ना पावो होए कृपालता हर हर त्यावो। कोट कर्म कर देह ना सोदा साह संगत मैं मन प्रबोधा तृष्णा बुझी बहुरंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल। कानड़ा महला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ। पूजा चरना ठाकर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जां को सतगुर मया करे ही। अज्ञान परम बिन सह दुख डेरा जा कै हृदय बसै गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहो नानक तन पूरा पाया। कानड़ा महला पंजवां भगत भगतन हूं बने आई तन मन गलत पय ठाकर स्यों आपन लिए मिलाई रहाओ। गावन हारी गावै गीत ते उदरे बसे जे चीत पेखे बिंजन परोसन हारै जे भोजन कीनो ते तृपतारै अनक स्वांग काचे पेख तारी जैसो सा तैसो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवां तेरो जन हर जा सुन तो माहयो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जातकत पेखो आहयो सब ते परे परे ते ऊंचा गहर गंभीरा थाहयो। ओत पोत मिलियो भगतन कहो जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावै गुण नानक सहे समास समाहयो। कानड़ा महला पंजवां संतन पह आप उधारण आयो रहाओ दर्शन पेड़त होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मलो हर हर औख दिखायो। अस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कथू तायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिप्त नाम आयो। कानड़ा महला पंजवां बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बने आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह सुमत साधु ते पाई। सब मैं रव रहया प्रभ एक पेख पेख नानक बिकसाई। कानड़ा महला पंजवां ठाकर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओढ़ तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस परोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय ल तरना। तुमरो बल तुम संग सोहेले जो जो कहो सोई सोई करना तुमरी दया मया सुख पावो हो कृपाल ता पौजल तरना। अपैदान नाम हर पायो सिर डार्यो नानक संत चरना। कानड़ा महला पंजवां साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेकी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ। नह त्रिपतानो राजो बंतान बहुर बहुर फिरताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है सांत पाई गुन गाया बिन बूझे पशु की न्याई ब्रह्मो व्याप्यो माया।
ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਜੇਵਰੀ ਕਾਟੀ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ ਸੀਤਲਾ ਸੁਖ ਸਾਤ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਿਤ ਹਾਏ ਰਹਾਓ ਸਗਲ ਆਸ ਹੋਤ ਪੂਰਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਏ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਹੁੜ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥੀਐ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਰਹਾਓ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਸਰਮਨਾਸੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਧਾਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖਹਰੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉੱਚੀ ਬਾਨੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਾਨ ਤਨ ਧਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਰਹਾਓ ਈ ਤੂਤ ਕਹਾਂ ਲੋਭਾਵੈ ਏਕ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਏ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਆਸਨ ਮਿਲ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਖ ਪੇਖ ਬਿਕਸਾਓ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਏਕਾਂਤ ਰਹਾਓ ਆਨੰਦਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखे दल संतन तुमरे गायो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटायो पयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला।

पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रहन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेट नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साजना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रप्रसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन सरन गही पूर्ण अविनाशी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहं मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाह गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोविंद त्याग आन लागे अमृतो डार पूम पागे बिखेरा स्यों आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोयत खोयत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संग मलाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराद गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभां पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास त्यावो मुख नहीं मोरै किछ संग ना चाले लाख करो रह प्रभ जी को नाम अंत पकरो रह मनसा मान एक

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना। दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन। प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ आओ, तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा। दर्शन भेटे बिन सत संगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिख बूज गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो। हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हों कैसे कराओ। हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए। त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो। जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी। सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाक रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा, कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल। हां हां मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए। चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना। कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान। तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवा, प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ। तटन खटन जटन होमन, नाही डंड धार सुवाओ। जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ। सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवा, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पावन भगत पवचल, पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिबते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन। प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन। आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए। पतत पावन बिरद स्वामी, उदरते हर त्याए रहाओ। संसार गार बेकार सागर, पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो। राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप विनाश, मन दर्शने की प्यास। प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक। हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा, वार वारो अनक डारो। सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, अहं तोरो मुख जोरो। गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗ ਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਓ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਊ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ।

तुम जानो हम बिरथे, कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो, कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरै, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुनथई, धर्म अर्थ सब काम मुख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वट भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हों मैं मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजै। हम निर्गुणी मनूर यत फीके मिल सतगुर पारस की जय। रहाओ स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब वंश है। नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने मेरे साधु लुकी दी जय। साधु साधु साध जानी के जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पहे साधु जन जन हर भगवान दखी जय। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया क्यों कर तंत नी जय। तंत सूत किशनिक सह नाही साक्त संग ना की जय। सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय। अंतर रतन जिवे हर माणक गुर कृपा ते ली जय। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी हम क्यों कर मिले मिली जय। नानक मेल मिलाए गुर पूरा जन को पूर्ण दी जय। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवि जय। साधु साधु साध जानी के मिल साधु हर रंग की जय। रहाओ जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय।

पीवतं संतना तृपते, सहनशील संतं समित्रस दुर्जन, नानक भोजन अनक प्रकारेण, निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान पंगन, शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन, गोविंद नाम जपंत मिल साध संग, नानक से प्राणी सुख बसन, सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाहं तन्यमरता, आवदे गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण, आरूढ़ ते अश्वरथ नाग, बुजंते प्रमार्ग, विचरते निर्भयं सत्र सैना, तायंते गोपाल कीर्तन, जितते विश्व संसार, नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर, मृग तृष्णा गंधर्व नगरं, द्रुम छाया रच दुर्मत, ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या, स्मरंत नानक राम राम नाम, नच विद्या निदान निगमं, नच गुणग नाम कीर्तन, नच रागरतन कंठं, नह चंचल चतर चतर, पाग उद्यम लभद्यंग माया, नानक सा संग खल पंडित, कंठ रमणी राम राम माला, हस्त ऊच प्रेम तारणी, जीह पणिजो उत्तम सलोक, उदरनंग नैन नंदनी, गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रष्टन, कुकरै सुकरै गर्भदय काकै, सर्पनै तुल खलै, चरणार बिंद भजनं, हृदयंग नाम तारणै, कीर्तनं साध संगे नानक, नह दृष्टांत जमदूतन, नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजन, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर, नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव, नच दुर्लभं बंता बिलास, नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं, नच दुर्लभं चतर चंचल, दुर्लभं एक भगवान नाम, नानक लभद्यं सा संकृपा प्रभं, जत कतै ततै दृष्टं, स्वर्ग मर्त पयाल लोकै, सर्वत्र रमणं गोविंद, नानक लेप शेप ना लिप्यते, बिखिया पयंत अमृतं, दुष्टा सखा स्वजन, दुखं पयंत सुखयं, पै पी पंत निर्भय, थान बिहून विश्राम नामं, नानक कृपाल हर हर।

बाद समन जवे इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिर ओ कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ।

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर है चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

पार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करहेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै जे मुख निकसे राम, ताके पग की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राख्यो नाओ, चार दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी कर काले आया पीसाए पीसाए, तै सह बात ना पूछिए कब हो ना लाई पाए। कबीर जे दरियावत जाते हो हटके नाही कोए, सोदर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरे ओ, गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा, तब उतर पर्यो हाँ फर्क। कबीर पापी भक्त ना पावई हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरै जै बिगंत जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर, काया हांडी काठ की ना उचरे बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हास्य दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसिए गुण को मरिए रोए, अब गुन यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट, गुर जो नाचे तय अपनो अद माज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुजंग मन बसे मंत ना माने कोए, राम बियोगी ना जिए जिए ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, तेह मिलते ऊ तुम पे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिले ओ, तेन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हाँ ही पला दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिल है आए। कबीर सात समुद मस करो कलम करो बन राए, बसदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चूके सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक, अंधा लोग ना जान नहीं रहे कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेह चढ़ी सुनो वीर मसान, लोग सुबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जां को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओह चूले ओह चीरी है साकत संग ना हेर। कबीर पार पराई सिर चरै चलो चाहे बाट, अपने पारे ना डरै आगे औकट काट। कबीर बन की दादी लकरी ठंडी करे पुकार, मत बस परो लोहार के जारे दूजी बार। कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते शै मुए चार पुरख दोए नार।
कबीर देख देख जग ढूंढया कहूं ना पायो ठाओर जिन हर का नाम ना चेतियो कहां पुलाने और। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाहो सागत संग ना कीजिए जाते हुए बिनाहो। कबीर जग में चेतियो जान कै जग में रहो समाए जिन हर का नाम ना चेतियो बांधे जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवर आस निरास नरक पर ते मान नहीं जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत चाले थे हर मिलन कहो बीचे अटके उचित। कबीर कारण बपरा क्या करे जो राम ना करे सहाय जेह जेह डाली पग तरो सोई मुरमुर जाए। कबीर यवर है को उपदेश ते मुख में पर है रेत रास बिरानी राखते खाया कर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जौ की पूसी खाओ होनहार सो होए है सागत संग ना जाओ। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत सागत कारी कामबरी तोए होए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए जो किश किया सो मन किया मुंडा मुंडिया जाए। कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए ता जाओ चरण कमल चित बेदया।

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पहला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड हीरा किसका बापरा पुज नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबे कौ खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोई मिल गया परया कले जे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक अंधे एक न लाग गई जो बास बजाइए फूक। कबीर है गै बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी कौ मान ओ मांग सवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मांडे हाट जब ही पाइए पारखू तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोर बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जब ले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रह निसंक जो जानु निर्दावे रह सो गर इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काठ की दै दिस लागी आग पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छाड़ संतई जो कोटक मिले असंत मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देहे दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देहे गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेहे। जह अन पौत है पह नहीं जह पौत है हर ना है
कहो कबीर विचार क संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, कबीर जा की दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम मैं राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवीए हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे भूत बसै तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सतगुरबान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी भूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझ से लर परिया तुझे किर फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो

मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसु के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पही ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुभ्र फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तोहे साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

देही रोग ना लग गई पल्लै सब किश पाए, फरीदा पंख प्राहुणी दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज, फरीदा रात कथूरी वंडी है सुतिया मिला ना पाओ, जिन्ना नैन नींद्रा वले तिन्ना मिलन को आओ, फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग, उचे चढ़ के देखिया ता कर कर ए हायग, महला पंजवा फरीदा पूम रंगावली मंज विसूला बाग, जो जन पीर निवाजे आतना चना लाग, महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे, विरले कई पाईन जिन्ना प्यारे ने, कंदी वहन न टाहे तोपी लेखा देवना, जिदर रबर जाए वहन तिदाऊ गौ करे, फरीदा दुखा सेती देह गया सूला सेती रात, खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कप्रवात, लम्मी लम्मी नदी वह कंदी के रहेत, बेड़े नो कप्र क्या करे जे पातन रह सुचेत, फरीदा गली सो सज्जन वी एक टूडेंदी नाल हां, तुखा ज्यो माली कारण तिन्नामा पिरी, फरीदा यो तन पौकना नित नित दुखी है कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगै पौन, फरीदा रब खजूरी पक्या माखे नहीं वहन, जो जो मंजे डीहड़ा सो उम्र हथ पवन, फरीदा तन सुका पिंजर थिया तलियां खूंडे काग, अजय सो रब ना बहोड़ो देख बंदे के भाग, कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत शोहो फिर देखन की आस, कागा चूंडना पिंजरा बसै ता उडर जाहे, जित पिंजरा मेरा शह वसै मास ना तिदू खाए, फरीदा गोर निमाणी सड करे ने करिया करे आओ, सर पर मैं थे आवना मरनो ना डरे आओ, एनी लोयनी देख दिया केती जल गई, फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई, आप सवार है मैं मिलै मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए, कंधी उतै रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चा पांडै रखी है किचर ताई नीर, फरीदा महल सखण रह गए वासा आया तल, गोरा से निमाणिया रैसन बैसन रूहा मल, आखी सेखा बंदगी चलण अज के कल, फरीदा मौतै दा बन्ना एवै दिसै ज्यों दरिया वै टाहा, अगे दोजक तपिया सुनिया हूल पवै काहा, एक नानो सब सोजी आई एक फिर देवे परवाह, अमल जे कीत्या दुनी वेच से दर गए ओगाहा, फरीदा दरिया वै कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करें दे हंजनो आ चिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केला विसरिया, जो मन चेतना चेते सान सो गाली रब किया, साडे त्रैमण दे होरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वातया सुनी बन, मलकल मौत जाय आवसी सब दरवाजे पन, तिन्ना प्यारिया पाइया अगै दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौ जणिया दे कन, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दर गए आए कम, फरीदा हां बलिहारी तन पंखिया जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास, फरीदा रुत फ्री वन कंबिया पत चढ़े चढ़ पाहे, चारे कुंडा टूंडियां रहन किथाऊ नाहे, फरीदा पाड़ पटोला तज करी कंबरली पहरे ओ, जिन्नी वेसी सोह मिले से ही वेस करे ओ, महला तीजा काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नान कर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे, महला पंजवा फरीदा गर्ब जिन्ना वड्याईया तन जोबन आगाह, खाली चले तनी स्यों टिब्बे ज्योमी हाहो, फरीदा तिन्ना मुख डरावणे जिन्ना विसारे उन नाओ,
ਐਥੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੋ, ਜੀਵਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵੱਡਾ ਵੇ ਮੋਹਤਾਜ, ਅੱਲੈ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਇਹੋ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਅੱਲੈ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ, ਤੂੰ ਪੀ ਵੱਜੈ ਨਾਲ। ਸੋਈ ਜੀਉ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲੋ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ। ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ਸੋ ਪਾਈ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अबनासी अबगत आपे आप उत्पत एक है तू ही एक है आना ही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर परै ही ते परै अपरे अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार उपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कौन उपमा देओ बड़े ते बडान जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तान जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार।

वर्ष एक हों फिर ओ किने नौ पर चौल आयो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणाओ क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पाण तै दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंथ न आवै रव संस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूरजन की आसा सतगुर से परम पद पायो अबनासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर भरे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर परे अन पौ उन्मान अकलिव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा भर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग ना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहो फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कुलुचरै तै जगतो धारण पायो
जगतो हर नाम निदान भगत पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर तै शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पवजल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताने जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुरु रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कथ होवै जियो तारण तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बखियाता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृ जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पारसार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसै तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ कर्म का किया अमरदास पल्ले कहो दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद, चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जहां की श्री रामदास तारण तरणंग, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कार मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जां की श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महामग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲੱਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉਂ

चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनका मोह भया मन मद का। 84 लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाइए परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोई न जाने। शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समरथ, तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथरा जन जान कही जी साच, सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तारना तावत है। मथरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब दर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कहो, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तरै फिरत, सगल जुग कब होक को उपावै आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै, जा को शिव मुन गहे नात जात कबलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए, कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ।
दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कहो एहो तथ, ताहे कहा परवाह कहूं कि जा कै बसीस धरियो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही हो पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खो जंत फिरे, अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे, करण कारण समर्थ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रसियो ही ओ। गुर अमरदास करता।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबसर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन तुमली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जोड़

सदा बस्त तुम साथ। तन तन जे तो कौ दियो पास्यो नेहो ना कीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए। कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत्व

कट कट में हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना।

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जो

गर्व करता है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत, जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बेदहर पायो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ न हर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रह।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत में, टेक एक

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन, प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही, प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौसकिया लाप, संग रागनी पांचौ थाप, गोंड करी अरदेव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक ओ भारा, खौ खटियौ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल गायन तार मिला वही, तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए, सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र मैं

कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नमा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचों संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचों संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचों चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसे सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसे सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासे, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ यार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

विचारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे

विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, जोग जोग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माछ पयाले, गावन

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड अवर ना कोई, तू जोग जो

देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

क्यों बुझै जान है बुझाई, आखन सुनना पौन की बाणी। इहु मन रत्ता माया, खसम की नजर दिल है पसंदे, खसम की नजर दिल है पसंदे, खसम की नजर।

निदान अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हों तिन कै बलिहार ने जिन्ना नामे लगा प्यार से सुखिये चौं जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार गुर मिलिया नाम पाईए चूकै मोह प्यास हर से ती मन रब रहया।

गया पछताए। जिस नदर करे सो उबराए, हर से पील बलाए। देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए। जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

सेजन शब्दे सोहने तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमती सच सलाहना गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारावार घट घट आपे।

जय भाए। शब्द रतियां सोहा गणी, तिन विच हो आहो मैं जाए, तिन विच हो मैं जाए। सदा पिर राव है अपना, तिन्ना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया, पिर मन पाया जाए। अज्ञान मति अंधेर है, बिन पिर देखे भुख ना जाए। आव हो मिल हो सहेली हो, मैं पिर दे हो मिलाए। पूरा भाग सतगुरु मिले, फिर पाया सच समाए।

जिन सब किछ वस कीता, घर इको बाहर इको, थान थनन तरे आप, जी जंत सब जिन किए, आठ पहर तिस जाप।

पिया अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए, हर बिंदु जाको नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह, चरण

राम नाम अमृत नगर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार। रहा

पूर थान थन तर डब रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजियो।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन न आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चा

विचार। नानक तिस शरणागति जे सगल कटां आधार। श्री राग महला पंजवां। रसना सच्चा सिमरिया मन तन निर्मल होए। मात पिता साख अगले तिस बिन अवर ना कोए। मेहर करे जे अपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास बिन सच्चे।

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागै डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड जासी लख करोड़, सर पर उठी चलना छड जासी लख करोड़।

रहाउ। जिच रवसिया कंत घर, जियो जियो सब कहात। जा उठी चलसी कंतड़ा, ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शह सेव तू, साहुरड़ै सुख वस। गुर मिल चज आचार सिख, तुद कदे न लगै दुख।

पंजवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसह त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याए गुर के चरण मन मह त्याए छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिवलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौ तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाउ सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच

वड पुरख सुजाना रहाओ, मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

पाए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रब रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुर दाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार।

पास सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा

नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

दर दरवेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज।

फाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए ऐसा

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग हो रहा गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार साच

पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विकसै असने जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी जल

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मन मुख भुलै भुलाइए फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ फुलिए देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइए।

पहले स्तार है अष्टपदियां, श्री राग महल्ला तीजा। कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा कर।

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आनंदन भगत

पंखी बिरख सुहावड़े उडहे चौदस जाए जेता उडहे दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए।

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरण वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पावे।

सतगुर शरणा सतगुर सच दिढ़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्द पवजल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया।

आए जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे लै समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन सत

जा जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसै न मिलिया भेत भेत चेत हर किसै न मिलियो जा जम पकड़ चलाया।

चित्त राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मर हो गए झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुविधा व्यापै दूजा तीजै पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा सर हंस उलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जने वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए अंतकाल पछता।

आर्या मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संजम जावे चोट न खावे ना तिस जम्मन मरना काल जाल जम जोह न सकै पाए भगत पै।

दरगाह सदा सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात। कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद इयाणी पे अड़े क्यों कर हर दर्शन पिखै। हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सोहरड़ै कम सिखै। सोहरड़ै कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याय। सहियां विच फिरै सुहेली हर दरगाह बां लुड़ाए। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम के रखै। मुंद इयाणी पे अड़े गुरमुख हर दर्शन दिखै। व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा। हो मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा।

आया खांडवर पांड हर सोभा होई इहुदान ना रलै रलाया पूर मन मुख दाज जे रख दिखा लह सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबुला हर देव हुदान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबुला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जुग।

गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहया बनवारी कट कट नजर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

दुख मिटाया, चित्रगुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।

सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाउ सर्ब सठापुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्यावहो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास धन।

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावण अवर न करना जाए महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मानजने हर सेती लिवलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मनमुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम,

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

गर्भ कुंडल जब आशत उर्द ध्यान लेव लागा मृतक पिंड पद मदना अहनस एक अज्ञान सो नांगा। दे दिन संबल कष्ट महा दुख ते दिन संबल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ध्याइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत।

सारंग पाणी तन सो देश जहां तू बसया मेरे सज्जन मीत मुरारे जीओ हों कोली हों कोल कुमाई।

प्रयातुदभगवंता मोहे रैन ना बिहावै नींद ना आवै बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुम्हाई।

तेरा अखोट पंधारा, जिस तू देहें सो तृप्त अगहावै, सोई भगत तुम्हारा जियो। सब को आस है तेरी बैठा, घट घट अंतर तू है बूठा।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मनमुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सागुणवंती सावड भागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ बिचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबरहाई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए।

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै, जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो, कर कृपा मोहे साद मिलाया, मन तन शीतल धीरज पाया, प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर, हर मंगल नानक गावै जियो, माज महला पंजवा, पार ब्रह्म अपरंपर देवा, अगम अगोचर अलख अपेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा, हर त्यावह गुरमुख गाती जियो, गुरमुख मधुसूदन निस्तारे, गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे, दयाल दमोदर गुरमुख पाइये, होरत कितै न भांति जियो, निरहारी केशव निरवैरा, कोट जना जाके पूजहै पैरा, गुरमुख हृदय जा कै हर हर, सोई भगत एकांति जियो, अमोघ दर्शन बेअंत अपारा, वड समरथ सदा दातारा, गुरमुख नाम जपिये तित तरिये, गत नानक विरली जाती जियो, माज महला पंजवा।

तै द्वारै दर्शन पेखत मन आग हवै नानक मिलन सुभाई जियो माज महल्ला पंजवा दुख तदे जा विसर जावै भुख व्यापै बहु बिद धावै सिमरत नाम।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवा जियो। दुख पंजन निधान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

पियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभु कृपा ते हर हर त्यावौ। प्रभु दया ते मंगल गावौ। उठत बैठत सोवत जागत, हर ध्याये सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोकौ साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो। जिस

पंजवां अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब पौ बिनसै हर हर त्याई है।

दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन तिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल।

साथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पौ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौनिद नाम भरे पंडारा आद अंत मध प्रभ।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाव पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अनदिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मेलै, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय।

जिस आप भुलाए सो किथै हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिट ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी, पूरे कर्म मिला बनिया। पेई अड़ै तन अन दिन सुती, कंत विसारी अवगण मुती। अन दिन सदा फिरै।

तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया, हों वारी जीओ वारी, एकस स्यों चित लावणिया, गुरमति मन एकत घर आया।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

सारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख होवै सो अपना कर राखै पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चै रंग राते सहजे प्रभ सेव है अन दिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावहै हर दर सो

मिल रहया सहजे सहज समा बनया गुरमुख होवै सो एक स्यों लिवलाए दूजा परम गुर शब्द जलाए।

सच विहज है सच कमाव है सचो सच कमावणिया बिन राशि को वथ क्यों पाए मनमुख भूले लोक सभाए बिन

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै भाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए।

मिलै तचू कै फेरा, जा तुद भावै ता नाए रचा वह, तू आपे नाऊ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक स्यों लिव लागी।

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावे गुरमति मन सचो पावे सचो सच रवह दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सानमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिस कौ तू प्रभ

बिनससी तित वेला कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी पेत छड़ खड़ो ते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत हाथ

आए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत है ना जाए प्रभु बिन दूजा को नहीं प्रभु बिन दूजा को नहीं।

ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट।

मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरो मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमै विच दुख काले नानक गुरमुख होमै टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नै जलो अन्न पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला।

आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्म विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सद

हाथ है कहो नानक बिचार कारण करते बस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसमें कै दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विगसया खसम हूं पूरा पाया।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है, नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत।

इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा, इस काल युग में।

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाओ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख

मन शब्द मरै प्रतीत होए हों मैं तजे विकार जन नानक करमी पाइन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण समलै सहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरै पेय फिर वसै कहो कित बिद पाइय।

मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हमरामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा

त्रिपित गुर साचा गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावै।

हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए।

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक।

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

पुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रत।

सतगुर दर्शन अगन निवारी, सतगुर पेट तहो मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच महराते।